मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

वैरा सुने हाथ वैसगा नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवै, लख होवै लखवीस, लख लख

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA99PE. Come and share the joy of Navratri with us.
2: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
3: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
4: डार्लिंग, इट्स माय लास्ट सीजन ऑफ कॉफी विद करण. व्हाई वुड आई डू एनीथिंग कंट्रोवर्शियल? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah. Love you too.
5: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
6: A little sparkle, a lasting impression. Diamond tennis bracelets from £2,500. Meena Jewellers, 181 Upper Tooting Road. Call 020-8767-7627. Meena Jewellers.
7: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 a.m. and Laika Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner Laika Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
12: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
11: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
12: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
11: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
12: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016.
11: दिवाली का जश्न के संग. आज नवरात्रि का चौथा दिन है. इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की. प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए. माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी. नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
13: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Leica Gold.
1: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with SKLP CUK, Sri Kutch Leva Patel Community UK on Thursday, 15th October at India Gardens, West End Road, Northolt, UB56RE. Join us for a wonderful celebration of music, dance and community.
2: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Bringing families together, one meal at a time. Loved by generations since 1970.
3: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
4: Experience the magic of Mexico City, Cancun, Mayakoba, Tulum and Caribbean Islands with TravelHubWorld.com.
5: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com. Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 AM and Leica Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
1: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फात्सुमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: London. Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA99PE. Come and share the joy of Navratri with us.
0: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
2: बात क्या है बंटू?
3: अरे बोलो काक भसुंडी।
0: मेरठ की कियोटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
4: अरे मिनी
5: क्या हुआ? कैसे
4: पे हो तो गया?
0: और लाइफ बन गई हेवन।
6: भाभी डायन है।
0: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
7: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
0: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
7: आप सिर्फ मजे लो।
8: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
9: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
8: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
9: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
8: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
1: Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with TravelHubWorld.com.
12: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
12: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
13: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
15: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
16: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
0: Listen to Laika Gold as we bring you a whole hour of Navratri devotion every day at 9 a.m. Tune in and start your day with the blessings of Ma Durga. Navratri Hours, sponsored by Tilda. Tilda Basmati, at the heart of your family celebrations. Loved by generations since 1970.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Celebrate every get-together with Haldiram's.
2: Punjabi samosas, aloo tikki, momos, spring rolls, beetroot kebab and more.
1: Bring everyone together over your favorite snacks. Find it at your nearest grocery store.
3: Haldiram's.
1: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
4: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
1: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रोहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
4: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट. पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
1: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
4: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116.
1: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
0: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
5: વાવ, આટલા સ્વાદિષ્ટ મઠિયા ને ઘૂઘરા શું ઘરે બનાવ્યા છે?
1: ના રે, આ તો શાયોનામાંથી લાવ્યા છે.
5: વાહ, તો આ મીઠાઈ ને ફરસાણ પણ શાયોનાના જ હશે ને?
1: હા, બિલકુલ.
6: સેલિબ્રેટ ધ ફેસ્ટિવ સીઝન વિથ શાયોના. એન્જોય ક્રિસ્પી મઠિયા, ડિલિશિયસ ઘૂઘરા, સેવરી ફરસાન એન્ડ માઉથ વોટરિંગ મીઠાઈ. વિઝિટ શાયોના શોપ્સ ઓર શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર નીઝડન. ઓલસો અવેલેબલ એટ સિલેક્ટેડ મોરિસન્સ, સેઇન્સબરીઝ એન્ડ ટેસ્કો સ્ટોર્સ ઓર શોપ ઓનલાઈન એટ shayonauk.com. શાયોના, સ્વાદ જે તહેવાર ને બનાવે ખાસ.
7: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। मनोरंजन कार्यक्रम में खुशामदीद। स्वागत है आपका संगीत की इस महासागर में। गोते लगाइए और खुशियां पाइए। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज बुधवार, वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 14 तारीख, और वक्त हो गया है हमारी आपकी मुलाकात का, यानी 10:05 हुआ चाहते हैं। और आज भाई संवत 2083 के आश्विन मास की ये नवरात्रों में चतुर्थी तिथि है, माँ भगवती की उपासना के दिन चल रहे हैं। लोग भाई शाम को डांडिया गरबा खेलते हुए माँ भगवती की स्तुति करते हैं, कहीं नाचते गाते हुए धूम मचाते हुए, यानी खुशियाँ बांटते हुए बखेरते हुए माँ भगवती की आराधना। भाई कष्ट लेकर के भक्ति करें तो हम ऐसे संत नहीं हैं। एंजॉय कीजिए प्रभु से प्रेम, माँ शक्ति से प्रेम जो है वो एंजॉय कीजिए। आइए, अगर आप भाई रात मंदिर गए हैं या किसी कम्युनिटी सेंटर में कहीं आपने भगवती की आराधना की है, माँ भगवती को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये मौका दिया। और भाई आप सबके घरों में सुख शांति हो, आनंद की स्थापना हो, खुशियां हो, यही कामना।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. Happy Navratri from Leica Radio and Leica Gold.
1: Happy Navratri. और भाइयों गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा के हो वही ना ये गा वही वेद पुराण। यानी भाई जो सत्संग प्राप्त होता है, जो भजन कीर्तन कथा डांडिया गरबा नृत्य, ये भाई बिना उस भगवती के कृपा के प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद उसको, उसने हमें इस चीज़ से, इस सात्विक आयोजन से जोड़ा।

0: कल भाई किशोर जी की वो पुण्यतिथि मनाते हुए हमने इतने गीत किशोर कुमार के बजाए कि वो नशा अब तक तारी है। हम लगाते हैं गाना आशा भोसले का तो निकलता है किशोर कुमार की आवाज में।
1: अब तो
0: हाँ
1: हुआ पुराना किस्सा
0: जी।
1: अरे

0: खातिर कोई शराफत कोई
1: इंसाफ की बात करते हो भाई, स्क्रीन पर लिखा था आशा भोसले, अरे भोसले नहीं आशा लिखा था, बाद में पता लगा भाई आशा जी का गीत नहीं, आशा फिल्म का गीत है शर्मा जी। या अभी तक आप ये आपकी आवाज से लगता है कि रात भर आप जागे हैं। अंदाज से भी लगता है कि कुछ खोए खोए हैं, स्टूडियो में आके सोए सोए हैं। बोले जी आप रात को सोते नहीं? भाई रात को आजकल तो बहुत सारे लोग नहीं सोते, तो फिर आप नींद पूरी कैसे करते स्टूडियो में आके? ये इंसाफ कहाँ का है। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम, और आगे बढ़ते हैं भैया आपको, पहले तो वो जो एशियन मीडिया अवार्ड्स है ना उनकी याद दिला दें आपको।
2: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे अगर भारत भिजवाने हो अपनों को तो रेट अब भी अच्छे चल रहे हैं। आज का रेट एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 125.7 इंडियन रुपीज, 125 रुपए और 70 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप, पर भूलिएगा नहीं शर्तें लागू हैं।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: And now, the weather.
4: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle and a chilly wind blowing from the west, north, east and south.
5: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I won't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
7: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it.
8: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
9: Dil ne ye kaha hai dil se. Bole chudiya.
8: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: क्या सुनवा रहे हैं शर्मा जी? ठीक सुनवा रहे हैं शर्मा जी, क्योंकि शर्मा जी को पता है कि आज भाई बुधवार है और बुधवार को क्या होता है, शरारती।
1: तूने जल्दी तो मेरे दिल को शनि पीस को काट काट को चलने में।

0: कार्यक्रम शुरू होता है और भाई घड़ी पर नजर गई तो पता चला कि खबर गई नहीं, अभी नहीं गई है, खबरों का समय हो गया है। खबरों भाई, एक तो चर्चा उस व्यक्ति की है जो टाइगर के भाई पिंजरे में एंटर कर गया, तो मतलब उसके इलाके में एंटर कर गया, और हालांकि बैरिकेड मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित वो बनाया जाता है उसके लिए, परंतु वो एंटर करके और फिर उसके साथ बतियाने लगा और भाई वो फिर उसका शिकार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, टाइगर ने उसको झिझोर डाला। और अब पता चल रहा है कि वो मानसिक रूप से विकसित था, मतलब थोड़ा सा दिमागी तौर पर कमज़ोर था, और भाई ऐसे में उसको कुछ जो इलाज चल रहा था वो मेडिसिन भी ऐसी दी गई थी कि वो ये हरकत कर बैठा और भाई ज़िंदगी खो बैठा। इस पर चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है, हालांकि कई दिन तक उसे बंद रखा था और उसे भाई टाइगर को इंजेक्शन दे करके मारने का प्रोग्राम भी जो है वो नहीं रखा गया था, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, वो उसका काम है, उसकी नेचर है ऐसी, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो भी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं था। ये खबर है, और क्या क्या खबरें हैं लीजिए, समय हो गया है, देखते हैं क्या।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क का आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। भाई अंग्रेज क्रिश्चियंस के धार्मिक प्रमुख पोप के फेफड़ों का इलाज हुआ है, वो फेफड़ों के कैंसर से ग्रसित थे, डायग्नोस हुआ और उस पर जो फिर उसका उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अमेरिका से आने वाली खबरों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐलान सामने आया है ग्रीनलैंड को लेकर के, बताते हैं। राजस्थान के फॉर्मर एमएलए की हत्या के मामले में एसएचओ सस्पेंड, कई अन्य के खिलाफ एक्शन। और बिहार में एक नाव पलटने से कम 13 लोगों की मौत हुई है, भारत से आने वाली खबरों में यह खबर छाई हुई है। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। बिहार के वैशाली जिले में राधोपुर थाना क्षेत्र के तहत मंगलवार रात को कल गंगा नदी में नाव पलटने से कम 13 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटने पर जिला की डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 13 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं, जिनमें से 9 बच्चियों और 4 बच्चों की डेड बॉडी शामिल है, सबकी उम्र 15 साल से कम बताई जा रही है। इंटरनेशनल खबरों में यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली के, जेलेंस्की ने रूस पर इसका इल्जाम लगाया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने रात भर राजधानी कीव और खारकीव में एनर्जी और कुछ इंपोर्टेंट बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने 39 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 120 से ज्यादा हमलावर ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत से आने वाली खबरों में एसआईआर के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये भाई आईएसआर उन लोगों को ढूंढकर जो कि घुसपैठ करके या देश में किसी तरह से बिना उचित वीजे के या उसकी एंट्री करके और फिर वहाँ देश की वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं या किसी तरह से उन्होंने वहाँ पर ठिकाना बना लिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का लॉ है। बार एंड बेंच के मुताबिक ओवैसी ने जो ये कानून बनाया गया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल की है। सौरभ दास और आशुतोष राका के जेल जाने पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश करने वाले न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। काकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष और सौरभ दास को लेकर के अभिजीत दीपके जो काकरोच पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मुझे याद है कि आखिरी बार किसी हिंदुस्तानी को पब्लिक प्लेस पर तिरंगा फहराने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में जेल भेजा गया था, अब ये सरकार ऐसे लोगों को जेल भेज रही है। उन्होंने लिखा कि सौरभ और आशु जानते थे कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है, पर फिर भी वे जंतर मंतर गए और उन्होंने बड़े फख्र से अपना राष्ट्रध्वज फहराया। हाईजैक की संदिग्ध धमकी के बाद, सस्पेक्ट थ्रेट के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया और पता चला है कि इस हवाई जहाज की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे, बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 को हाईजैक की सस्पेक्ट धमकी के बाद सुरक्षित तरीके से जयपुर उतार लिया गया और सुरक्षा जांच की गई। सब ठीक ठाक था फिर भी, और अब धमकी की जांच चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर तेल, गैस और खनिजों की खोज जल्द शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां आसानी से अवेलेबल जो तेल की मात्रा जो है, क्वांटिटी, दुनिया के लगभग किसी भी दूसरे भूभाग से कहीं ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका और यूरोप दोनों की रक्षा और आक्रामक फौजी कार्रवाई के लिहाज से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व जो है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बेजोड़ है। अमेरिका पर भविष्य में होने वाले किसी भी हमले को ग्रीनलैंड के रास्ते से ही गुजरना होगा, इसलिए ग्रीनलैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भरतपुर यानी राजस्थान का ये ज़िला है, उसके बयाना से बीजेपी के विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के MLA रहे अतर सिंह भड़ाना की इस संडे को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सरकार ने कल 3 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की है। 11 अक्टूबर को हुई एक हिंसक झड़प में उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल शाम की कानून व्यवस्था को लेकर के एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी, उसके बाद आदेश जारी करके 3 SSP, 4 DPSP और SHO पर कार्रवाई की है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर पीसफुल प्रदर्शन में तिरंगा लहराने की बाद 2 व्यक्तियों को जेल भेजे जाने के बाद उन्होंने कहा है कि ये एक कायरतापूर्ण काम है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट के माध्यम से टिप्पणी की है। मुंबई में नाला सुपारा इलाके में एक बहुमंजिला यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से इमारत में कई लोग फंस गए हैं। इनमें एक बुजुर्ग और एक महिला की मौत भी हो चुकी है। वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पृथ्वीराज BP ने कहा है कि वसई विरार महानगर पालिका में अचोले एरिया में इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में रात करीब 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। बिहार के राधोपुरा दियारा में एक नाव दुर्घटना में लोगों की मौत पर केंद्रीय मंत्री और लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिराग पासवान ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पार्लियामेंट्री इलाके में राधोपुरा दियारा में हुए नाव हादसे में कई लोगों की मौत बेहद दुखद है और मैं परिवारों को हार्दिक संवेदना भेजना चाहता हूँ। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो 17 से 22 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान और भारत के दौरे पर रहेंगे। मार्को रूबियो भारत में मुंबई और जामनगर की यात्रा करेंगे। पोप लियो को लंग कैंसर होने की पुष्टि, वेटिकन ने दी सर्जरी के बारे में ये जानकारी। वेटिकन ने एक मेडिकल बुलेटिन में कहा है कि पोप लियो को फेफड़ों का कैंसर होने का पता चला, लेकिन उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी कामयाब रही है। 73 साल पोप की कल रोम के जेमेली अस्पताल में 90 मिनट की सर्जरी हुई और इसके बाद उनमें जो फेफड़ों का एडेनोकसर निमा जो कहा उसका पता चला और कहती हैं उनका ऑपरेशन कर दिया गया, कामयाब रहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई। और ईरान की IRGC नेवी के कमांडर ने कहा है कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी बेड़े का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमला करके उसे डुबो सकें। आइए हम देखेंगे। IRGC की इस वार्निंग के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरानी नेवी कमांडर के पास नौसेना बची ही नहीं है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उस हमले के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रगल लगातार चल रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

ये सुलगती हुई आग अच्छी नहीं होती, धुआं निकलता है पर ताप नहीं मिलता। थोड़ा सा डांस कर ले तो पसीना आए। ये सुलगती आंखें कब से सुलग रही है? पानी डालो। अरे पानी डालो भाई, और डांस शुरू करो।

0: जिंदगी वहाँ सेटल माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Discover Rio de Janeiro, Sao Paulo in Brazil, Machu Picchu and Cusco in Peru with TravelHubWorld.com.
2: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 or 0208-782-8833.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
3: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
4: Add desi tadka to your routine. With Jaimin Food ke variety of snacks, khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
3: Jaimin Foods Desi Cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
5: Simple, stunning, so you. Discover beautiful chains from just £225. Meenar Jewellers, 181 Upper Tooting Road. Call 020-8767-7627.
6: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
7: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGoon.com.
9: Mangal, Buddh, Veer, Shukr, Shani, Itwar. Saat dino mein hasna chahiye, kam se kam 700 baar.
10: सात दिनों में हंसना चाहिए भाई, अगर हंस सके तो. एक से कहा कि भाई हंसिए, मुस्कुराइए, ठाका लगाइए. बोले भाई साहब आपकी बात हो रहा है, हम तो शादीशुदा हैं. मतलब शादीशुदा नहीं हंस सकते भाई. बात तो सही है, क्योंकि जो फरमाइशों का दौर होता है ना पत्नी का, आपको कभी सामना करना पड़ा है? मेरा मतलब है, मैं वैसे हमेशा पत्नियों की साइड लेता हूँ, लेकिन भाई उनके पतियों के सामने तो उनकी साइड नहीं ले सकता ना, आप समझते हैं ना. मेरी अपनी पत्नी मुझे अक्सर, जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो जैसे मैं वो कुंभ को कवर करने के लिए बनारस गया था, वाराणसी, काशी जी, हाँ, तो भाई 10 दिन का दौरा था. आपको याद होगा वहाँ से मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था जब कुंभ चल रहा था है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में. तो भाई वहाँ से ब्रॉडकास्ट करता था, जब मैं निकलने लगा पत्नी की वही फरमाइश, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वाराणसी, रेडियो की तरफ से जा रहा हूँ कवरेज के लिए. तो कहने लगी बनारसी साड़ियाँ लाना मत भूलना. कहीं भी जाओ. मैंने कहा आज कहाँ जा रहे हो? मैं क्या शेफील्ड का दौरा है, शेफील्ड. अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ के यूटेंशियल बड़े मशहूर हैं, लाना मत भूलना. घर के किचन के बर्तन वगैरह, भाई कहीं भी जाओ. एक दिन मैंने देखा, मुझे बुलाया था यहाँ पर ब्रिटेन में जो इंडियन डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके जो साइकेट्रिस्ट कहेंगे ना, जो दिमागी तौर पर कमज़ोर लोगों का इलाज करते हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं भारत के यहाँ, उस खाली उस डिपार्टमेंट के, उस सब्जेक्ट के, क्या भाई उनकी अपनी एक एसोसिएशन है. उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया स्टेज पर, थोड़ा उनका दिल बहलाने के लिए. देखा, वो पागलों का इलाज करते हैं, हम उन डॉक्टरों का इलाज करते हैं. मेरा मतलब उनको हंसाते हैं. और साहब उन डॉक्टर्स के प्रोग्राम में जाने लगा तो पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि साइकेट्रिस्ट के एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके लिए. तो कहने लगी, सोच में पड़ गई. मैंने कहा देखता हूँ क्या कहेंगे आज, दवाइयाँ लेते आइएगा. झट कहती है ठीक है, जा ही रहे हो तो अपना चेकअप कराते आइएगा. फरमाइश तो फरमाइश है भाई, कुछ भी हो सकती है.
11: ये है
12: Like a Gold.
13: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
10: अब साहब करेंसी रेट सुन लीजिए. लैम फाइव वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी 126.16 रुपीस, पाकिस्तानी 366.77, श्रीलंकन 439.05, बांग्लादेशी टके दे रहे हैं 163.81 एंड मॉरिशन रुपए 63.14.
12: Leica Radio.
14: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
15: Manoranjan with Ravi Sharma.
16: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
10: Well, the gold is sold at the rate of 100.45 pounds per gram. हमारे एक दोस्त हैं भाई स्लाव में, पमी जी कहते हैं ये एक ग्राम की कीमत बताते हो, शर्मा जी सोने का भाव ऐसे मत बताया करो, ये इस रेट में कहते थोड़ी गरीबी झांकती है, आप बताओ किलो के हिसाब से एक किलो सोने का रेट क्या चल रहा है ये बताओ।
16: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
17: Sunshine, skyscrapers and souks.
18: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
17: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
18: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
17: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
18: Southall Travel. At all protected.
19: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
20: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
21: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
20: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
21: बीकानेर वाला।
22: London, get ready for an unforgettable night.
23: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
22: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
23: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
22: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
23: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
22: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
24: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
22: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
25: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer. celebrate with Haldiram's.
0: Punjabi chole, rajma rasila, yummy dal makhni, aloo matar, sarson da saag and more.
25: Festive favorites ready to eat. Shop at haldiramuk.com or at your nearest grocery store.
1: Haldiram's.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
22: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
4: Light up your Diwali. Buy one, get one free on all fireworks with a huge selection to choose from. Shop diyas, candles, mustard oil and all your Diwali decorations. So many offers, you'll have to come and see for yourself. Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
5: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 a.m, DAB and online. A part of the Leica Radio Network.
26: The top stories this hour. The family of a man killed by a tiger at Yorkshire Wildlife Park say deeply offensive media content about the incident is causing them severe distress. In a statement, relatives of William Chapman are asking people to stop sharing images and footage. The 23-year-old entered the animal's enclosure on Saturday. Dr. Campbell Mearns, an expert in zoology.
27: The nature of the boundary of the enclosure is determined by the species that's in there, and also the expectation that generally people are not going to try and enter the enclosure. There are some zoos that do need their standards to be improved. Yorkshire Wildlife Park is not one of them.
26: A man's body has been recovered after a fishing vessel went missing off the Outer Hebrides. It was sailing off Port of Ness on the Isle of Lewis. Police Scotland were alerted late last night. Two people remain missing. Around 600,000 people in Ukraine are without power after Russian drone and missile attacks overnight. Volodymyr Zelensky claims they hit crucial energy infrastructure in Kyiv and Kharkiv in violation of a ceasefire proposed by Donald Trump. The Ukrainian leader will visit Downing Street today for talks with the Prime Minister in a show of support after the US President's diesel deal with Moscow. Josh McAllister's a government minister.
28: No one wants to be in a position where the US is such a big player is making decisions that make the Ukrainian position that much more difficult. So what we want to do is support President Zelensky.
26: Russell Brand says he feels hopeful of good outcomes as prosecutors prepare to open their case in his rape and sexual assault trial. The comedians arrived at court accused of seven offences from 1999 to 2009, which he denies. Households could see a combined £240 million taken off their water bills by 2030. The regulator says it's because of poor supply performance. And scientists have discovered a new species of dinosaur. The long-clawed predator was discovered on the Isle of Wight. From Sky News, I'm Kat Suave.
5: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
29: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
30: Four beers, please, garçon!
29: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
10: Very good morning. आज के मौसम पर भाई जानकारी दें आपको. Well, मौसम वाले कह रहे हैं कि मौसम जो है वो आज भी सुहाना रहेगा. हल्के बादल आएंगे, जेंटल ब्रीज भाई, हल्की हवाएं जो हैं वो वातावरण को ठीक रखेंगी. आज मैक्सिमम टेम्परेचर बल 19 डिग्री लंदन में और 18 डिग्री मिडलैंड में है. तो कुल मिलाकर के सुहाना मौसम होगा. रात को जो है हवाएं चलेंगी, एरियाज ऑफ क्लाउड एंड सम clear spells in between at times will be available.
24: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.

वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क। लाइका गोल्ड के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और बहनों भाइयों इस समय प्रस्तुत करना चाहता हूं थॉट फॉर द डे। आज का विचार जिसके लिए आलेख हमें भिजवाया है वेस्ट लंदन से, नाम है उनका रश्मि कांत बग्गू भाई पटेल। ये पटेल साहब नाम है कि इसमें एड्रेस भी शामिल है, इतना लंबा भाई। दरअसल क्या है कि पिताश्री का नाम भी साथ जुड़ा होता है गुजरात में और भी कई भाई भागों में विश्व के। तो रश्मिकांत बब्गू भाई पटेल लिखते हैं कि रवि जी आज का चिंतन जो है एक प्रेरणा है, निरंतर काम करते रहने का संदेश है। मैं इस उम्र में भी खूब काम करता हूँ और काम मतलब सेवा करता हूँ, और सेवा समझ के ही काम करेंगे ना आप तो एंजॉय करेंगे। कहते हैं कि एक समय की बात है, भविष्य बताने वालों ने भविष्यवाणी कर दी कि इस साल भयंकर अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। लोग चिंतित हो गए, पहले से लोगों ने अनाज जमा करके भाई रखना शुरू कर दिया। ऊपर की ओर देख के आकाश कोई बता सकता था कि भाई बारिश होने का कोई चांस नहीं है, धरती सूखी बंजर हो गई। ऐसे में सुबह सुबह एक किसान को खेत की ओर जाते देखकर कंधे पर हल रखे और भाई अपने बैलों को लेकर के जब वो खेतों की तरफ जा रहा था, गांव वालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हल चलाने, धरती को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है। अरे भोले आदमी, इस साल बारिश नहीं होने वाली है, कोई फायदा नहीं है बीज बोने का, कुछ नहीं उगेगा। उसने कहा फिर भी मैं तो जाऊंगा। आगे बढ़ता गया, फिर लोगों ने रोका, भविष्यवक्ताओं ने रोका, क्यों अपनी मेहनत बेकार करते हो, क्यों इन बैलों को भी गर्मी में परेशान करते हो, इस साल बारिश नहीं होगी, कुछ पैदा नहीं होगा। किसान ने कहा आप समझते क्यों नहीं, अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगा, आलसी होकर बैठ जाऊंगा, पता है अपने काम को अच्छी तरह करने के लिए मेरा निरंतर अभ्यास आवश्यक है, तो अभ्यास समझ के ही। अरे भाई मैं तो खेती करना ही भूल जाऊंगा, हल चलाना भूल जाऊंगा, एक आदत पड़ी हुई है उसे निभाते हुए, और फिर कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, हल तो चलाना ही है, इस साल नहीं अगले साल भी काम आएगा, धरती उपजाऊ होगी। अब साहब लोगों ने तो ये बात सुनी, ये काम जरूरी है, अगर हम काम छोड़ देंगे तो काम करने का अभ्यास खत्म हो जाएगा, हम आलसी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, एक तरह से एक्सरसाइज

अब ही बिल्कुल एकदम विस्मृत कर दें। किसान गया, उसने हल चलाया और बादल टूट कर बरसे। व्यस्त रहो, अभ्यस्त रहो, मस्त रहो, काम करते रहो। आलसी देखते हैं किनारे खड़े, पर चलने वाले तो तूफान में भी चल पड़े। चलते रहना ही जिंदगी है, काम करते रहना ही स्वास्थ्य की निशानी है। धरती पुकार के कह रही है, हल चलाओ, मेरे सीने पर बीज बिखराओ, मैं उन्हें प्रफुष्टित करूंगी, मैं उन्हें फलने फूलने का अवसर दूंगी। प्रकृति कहती है, धरती कहती है, काम करो। जितना बने उतना करो।

आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें भेजा हाउंसलो से रश्मिकांत बग्गू भाई पटेल ने। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रैक्टिकल संदेश, काम करते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और अपने काम के लिए अभ्यस्त रहोगे।

0: भी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। आज के चिंतन के साथ जो गीत हमने आपको सुनवाया, मन भाइयों, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म 2 बीघा जमीन। गाने वाली आवाजें मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की थी। और साहब, चिंतन के संदर्भ में बहुत सारे संदेश एज यूजल आ गए हैं हमारे पास। पम्मी भाई कहते हैं, थैंक यू जी फॉर चिंतन एंड द नाइस सॉन्ग, सो नाइस ऑफ यू पम्मी भाई। अर्जुन जी, अनिल सोनी वियाना वाले, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर चिंतन। ही सेज उल्लास टोरंटो में, भाई देखिए वियाना में अनिल सुन रहे हैं, टोरंटो में उल्लास, हमारे भाई प्यारे प्यारे लिसनर्स को जोड़ रहे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र चौधरी, थैंक यू, आपको सॉन्ग अच्छा लगा। रागनी मानसी जगदीश भूषी में, थैंक यू फॉर अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज। क्योंकि मैंने देखा इस देश में हैं कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं, जब हमें घर बैठे पैसे मिल जाते हैं, भत्ता मिलता है, तो फिर हम काम करने क्यों जाए। सिर्फ पैसों के लिए नहीं काम किया जाता, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी मेमोरी बरकरार रखने के लिए, अभ्यस्त रहने के लिए। अरुणा भूपेंद्र पटेल, थैंक यू वेरी मच। नीला चौधरी जी, सो नाइस ऑफ यू। और देशराज बैसन साहब, भाई आप तो हमारे जो है कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट। हरविंदर जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सूरज राजकुमार जी, सुबह की प्यार भरी राम राम। कपिल वाटफोर्ड में सुनते हैं, और सुनते नहीं है जी, सुनाते भी हैं खरी खरी। किसी दिन आपकी पत्नी ने सुन लिया ना, फिर देखना। पत्नी ने कहा, सुनो जी, मैंने आज घर में नया वाईफाई लगवा लिया है। पति खुश होकर, पासवर्ड क्या रखा? पत्नी, 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, पत्नी कह रही है, उस दिन की तारीख डालो। पति, अरे वाह, बहुत रोमांटिक हो तुम, पासवर्ड क्या है? पत्नी कहती है, पासवर्ड है रोंग पासवर्ड। शादी की तारीख। और एक ने उसको समझाया, भाई हम तो समझदारी की बात करते हैं, लेकिन सामने से जवाब मिलता है वो ओवर समझदारी का। हमने कहा, देखिए मैडम, ये जो आपने उंगली में अंगूठी पहनी है ना, तो वो कहती है, मेरी शादी की अंगूठी है। हानी, अच्छी बात है, लेकिन आपने गलत उंगली में पहनी हुई है। शादी की अंगूठी से उंगली में नहीं पहनते हैं, गलत उंगली में है ये। आपको क्या? मैडम कहती है, मैंने शादी भी तो गलत आदमी से कर रखी है, इसलिए शादी की अंगूठी गलत उंगली में ही पहनना था। छोड़िए साहब, क्या रखा है, सच्ची बातों में वापस चिंतन की ओर। हरविंदर जी, कपिल भाई, थैंक यू वेरी मच। और सुखी सर जी, आई एम क्या कहते हैं, बोल रही हूँ। हाँ सुखी भाई, आज तो गाना लगा दो। कौन सा भाई, कौन सा गाना? कहते मेरा गाना लगा दो। आपने, आपका अपना भी कोई गाना है? नहीं, मेरे नाम कर दो। अरे भाई, मेरे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ा ही आपके नाम कर। अरे यार, मेरे लिए लगा दो। हाँ तो ऐसा बोलो, ठीक है लगा देंगे। कौन सा गाना है? कहते ठोक के झोंक के बजा दो गाना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और जैस्मीन, सो नाइस ऑफ यू। हेतल सोलंकी, हंसा वोरा और भरत गंगाराम, वत्सला जी, सुरेखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए लौटते हैं वापस संगीत की ओर, पर ये याद दिलाते हुए कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK. भाई वो वैसे तो बहुत सारी सेवाएं देते हैं, लेकिन पैसे भिजवाने के लिए कहते हैं कि हम बड़े दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो 1 पाउंड के बदले टुडेज रेट इज 125.7 रुपीज, 125 रुपये और 70 पैसे 1 पाउंड के बदले हम दे रहे हैं। भारत भिजवाइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, इंडियन करेंसी में ये रेट चल रहा है आज हमारा। और बहनों भाइयों, यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
5: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
6: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
7: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
8: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
9: Travel Hub.
8: At all protected.
7: Laika.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: हाजिर है ये बंदा हुक्म कर हुस्न का गुलाम। बैक टू बैक भाई संगीत सुनवाते हैं हम चिंतन के बाद 20 घंटे में और फिर आगे बढ़ते हैं लाइका रेडियो नेटवर्क पर। ये लाइका गोल्ड के प्रसारण आप तक पहुंच रहे हैं। आई एम रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और साहब ये स्टेशन
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: अगला
2: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: लाइक एक्स्ट्रा भाई पॉडकास्ट अपडेट में आपको बता दें कि हमारा नया एपिसोड आ चुका है एंड इट्स कॉल्ड लाइक अ मैन, यानी हमारे अपने घर की बात खुलासा कर रहे हैं या पोर खोल रहे हैं सारी अनफिल्टर्ड लाइक अ मैन, होस्टेड बाय सैंडी शाह, फीचर राजबदन, दीप राजा एंड विश भटनागर। और मैंने भाइयों ये गुप्त जानकारी हमारी उजागर हुई है, यहाँ पर ज़रूर देखिएगा लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई और जो दूसरे मेजर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अवेलेबल है, देखिएगा।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Amazon offers term time working to their employees, like Anton, who's home to look after his daughters during their holidays.
5: Hello!
4: To him, this is the best sound in the world. Actually, maybe that's the best sound of all. Now that's term time working, offered at Amazon. 10 weeks off guaranteed per year. Mix of paid holiday and unpaid time off. Conditions apply.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties.
11: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
12: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
11: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
12: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
11: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
12: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116।
11: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
13: ये तो बताओ कोई पता चला?
14: गुरु गुरु,
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
13: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर। टू बुक कॉल 02085145400, book online at Eventbrite.
16: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
17: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
18: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with SKLPC UK, Sri Kutch Leva Patel Community UK on Thursday 15th October at India Gardens West End Road, North Holt, UB56RE. Join us for a wonderful celebration of music, dance and community.
19: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970.
5: is coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
21: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay, yeah, love you too.
22: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October, only on Jio Hotstar.
23: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
24: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again. See ya.
25: Big celebrations, sweet moments, and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes. Sira Cash
26: & Carry. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
27: The one and only one, Ravi Sharma, on your

जाते हैं लोग बम्बई देखने यानी मुंबई, और कुछ लोग मुंबई वालों को देखने जाते हैं। मुंबई में एक बाजार है जिसका नाम है भिंडी बाजार। अरे साहब, भिंडी बाजार को कुछ लोग चोर बाजार भी कहते हैं। अरे क्या चोर बाजार, ठगी का ठिकाना है, वह नहीं जाना है भैया कहते थे। अब आपको पता है भाई, जहां जाने के लिए लोग मना करते हैं ना, वहां जाने को मन जरूर करता है। अब अपन वहां पहुंच गए, मैंने देखते हैं भाई कितने ठग हैं यहां पर। कहते हैं यहां पर जेब कट जाती है। अरे अपने आप थोड़ा ही कटती है, देखते हैं कौन काटता है। हम एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको, क्लेवर। हमने थोड़ी देर में वहां ऐलान कर दिया, भैया 3 घंटे से घूम रहा हूँ, हाँ किसी ने हमारी जेब से कुछ नहीं निकाला, कुछ नहीं। कहते जेब खाली कर देते, जेब काट देते। वे कहना था, एक भाई आके बोला, क्या बोल रहा? अरे क्या बोल रहे ला, 3 बार आपकी जेब खाली कर चुका हूँ, नकली नोट लेके घूम रहा है, वापस जा।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And let me tell you the currency rates, bhai. Agar aap paise Bharat bhijwana chahte hain ya kisi aur desh mein, Pakistan, Bangladesh, so they are giving rates for £1 in Indian currency, 126.21 rupees de rahe hain. Pakistani rupee 366.81. Sri Lankan rupee 438.91. बांग्लादेशी टके 161.67 और अफगान अफगानी 86.1.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: मनोरंजन विथ रवि शर्मा.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold का रेट बता दें भाई, किलो में नहीं, ग्राम में ही बताएंगे ग्राम का रेट. The gold is sold at the rate of 100.38 pounds per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
0: This is Like a Gold.
4: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी.
4: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी.
5: बीकानेर वाला.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
7: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
8: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
8: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
7: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ट IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: In times of loss, Om Funeral Care is here with compassion and support. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our experienced priests guide families through funeral rites in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day. Om Funeral Care, honoring your loved ones.
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: Fall in love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
6: मनोरंजन with रवि शर्मा.
7: और बहनों भाइयों, धीरे धीरे अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये भावना को समझो. भावना को, नहीं नहीं भावना की बात को समझो यार. भावना जी ने लिखा है, कहती है, एक आदमी बड़ा दुखी घर पहुंचा. पत्नी ने कहा, इतने परेशान क्यों हो? पति कहता है, नौकरी चली गई. कहती, क्यों दूसरों की नौकरी करते हो? अपना काम करो, कोई अपना काम करो. कहता, अपना काम क्या करूं? पत्नी कहती है, किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो लो, फिर बाथरूम में कपड़े भी हैं, और जब उनको ख़त्म कर लोगे ना, और काम दे दूंगी, बहुत काम है. आप भी ऐसा काम करते हैं? अपना ही कर रहे हैं भाई, आपको क्या है, दखलंदाजी नहीं है कोई, ताक झांक करना.

0: समझे प्यारे तेरे प्यार में लुट गए भिंडी बाजार में। पिछले घंटे में भाई जिक्र हुआ था भिंडी बाजार का, जो मुंबई वाले इसको चोर बाजार भी कहते हैं, पर आई डोंट नो क्यों कहते हैं। सुना राइट, प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है आपका। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, एक बजे तक ये हंसी के ठहाके, कुछ चटपटे गीत, कुछ चटपटी बातें। भाई ये सब बहुत जरूरी, आपको बताऊं, किसी ने कहा था किसको, सुरेंद्र शर्मा को, वो जो कॉमेडियन है सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि हैं, बल्कि भाई पॉइंट है, अच्छी बातें, कई वैसी बातें भी करते हैं जो बड़े काम की होती है लेकिन हंसी के बहाने से। अब उनसे किसी ने कहा, क्या आप ऊटपटांग बातें करते रहते हो लोगों को हंसाने के लिए? कहता है जी हंसाने के लिए तो ऊटपटांग बातें ही चाहिए, सीरियस बातों पर कौन हंसता बताइए। सही बात।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, पैसे भिजवाओ भाई अपनों को भारत में, अगर आप भेजना चाहते हैं तो आज का रेट हम बताते हैं। दे आर गिविंग 125.7 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड, 125 रुपए 70 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड। London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Sunshine, skyscrapers and souks.
4: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
9: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW13 7NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
10: Sponsored by Star Tours. Europe jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.

0: कुछ तो करना पड़ेगा, हम क्या करें? अरे बताओ भाई ये क्या करें? बर्तन पड़े किचन में कर लो।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहन भाइयों, हम भी कुछ कर लें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो एक दो बातें आपको याद दिलानी है, आप याद कर लीजिए। एक तो भाई पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली जो हैं वो 16 अक्टूबर शुक्रवार को परफॉर्म कर रहे हैं। भाई बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, पूरा परिवार, उनके पिताश्री, उनके अंकल और भाई वो खुद भी आजकल खूब नाम कमा रहे हैं। तो क्रिस्टल ग्रैंड स्लॉ में उनका प्रोग्राम है, 18 अक्टूबर को है बर्मिंगम में, ICC बर्मिंगम में, और 16 को स्लॉ में। मौका लगे जरूर देखिएगा, जरूर एंजॉय कीजिएगा म्यूजिक को।
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहन भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शर्मिला टैगोर। बिल्कुल एकदम, जितना शर्मिला मैं हूँ ना उतनी शर्मिला वो भी हैं। और साहब शर्मिला टैगोर की आवाज़ में कोई ऐसा गीत ढूंढ रहा था मैं जो थोड़ा सा फनी हो, जिसमें कॉमेडी हो। अब वो गीत मिल तो गया, बहुत ज़्यादा फनी नहीं है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ये शर्मिला टैगोर का नहीं था, लेकिन ये गीत शर्मिला टैगोर का है और बहुत पुराना है, लेकिन कुछ लोगों का जाना पहचाना। अरे ये दिल तुम बिन कहाँ चल रहा है भाई, दिल तुम बिन, रुको ए दिल, दिल भाई साहब कहाँ चल रहा है ये गाना।

0: भाई इसकी सुन लो, हमारी रहने दो, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हम क्या करें, किसी हमारे ही स्टेशन की लीकेज तो नहीं आ रही है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। आप बताओ, ये वाला गाना जो मैं सुनवाना चाहता हूँ, लगता नहीं हम क्या करें, गाना था जो मैंने क्यों किया था बड़ी मुश्किल से, जरा होले होले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। भाई लगे रहो, हमारे पीछे तो बहुत है, इतने देखो उधार जो जिन्होंने दिया था वो उधार मांगने वाले, अपना वापस मांगने वाले पीछे हैं, पुलिस वाले पीछे हैं। छोड़िए, क्या रखा सच्ची बात।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: This is Laika.

0: आ गई फरमाइश करने वाली मशीन आ गई पत्नी आ गई। बोल क्या चाहिए, बोल। अरे बोल दे।
1: लेते सैया ओढ़नी, बोल लेते

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जा

0: ले दो यार, ले दो, ले दे सैया ओढ़नी। याद आ रहा है कुछ, कौन सी फिल्म का गाना है? अल भाई इतना हम बता दें आपको, गीत संगीत प्रेम धवन की रचना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेट मी टेल यू द रेट्स दे आर गिविंग। भाई एक पाउंड के बदले आज हिंदुस्तानी करेंसी में दे आर गिविंग 126.13 रुपीज, पाकिस्तानी 367.31, श्रीलंकन रुपए 438.95, बांग्लादेशी टके 162.76 और केनियन शिलिंग्स 172.24 और अफगानी 86.08.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And let me tell you the gold by rate. Today, the gold is trading at the rate of 100.34 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: नेत्रदान के पक्ष में थे मिस्टर राजदान। नेत्रदान आई डोनेशन भाई, ऑर्गन डोनेशन करते ना, आंखें कहते दान करो, हाथ जोड़ हमने कहा क्षमा करें श्रीमान, माफ कीजिए भाई, हम तो आंख दे देंगे लेकिन अगर जिसको आंख मिलेगी उसने किसी खूबसूरत हसीना को वो आंख मारी तो उसका क्या बिगड़ेगा? आंख हमारी, हमको ही तो पाप लगेगा भाई। हम तो कहते हैं कि आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, कोई तो बीच में आना चाहिए, लोगों को चश्मा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आंख मारेगा तो उसके चश्मे को पहले लगेगी, चश्मा टूटेगा बाद में। तो भाई अगर किसी खूबसूरत लड़की ने वो थोड़ा सा सॉलिड सैंडल पहना होगा तो बंदा भी टूटेगा पर पहले चश्मा टूटेगा।

0: Falcon. Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
3: बीकानेर वाला परंपरा भी।
2: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
3: बीकानेर वाला।
4: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
5: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
4: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
5: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
4: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
8: This Diwali, celebrate with Shayona.
5: Enjoy Mathia and Chorafali. Mix and match any three for just £4.50.
8: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai available at Shayona stores.
5: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
8: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swad jit tehwar ne banave khas.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
11: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
12: अंदाज आपका, चमक हमारी. खूबसूरत चेन सिर्फ £225 से शुरू. मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड. कॉल 0208767-7627. Share festive sweetness with Haldiram's.
13: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
12: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
14: Haldiram's.
15: Manoranjan with Ravi Sharma.
16: और भाइयों भाइयों, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया. लेकिन आपको बाय-बाय कहने से पहले एक काम की बात कहूं. भाई लोग जो है पता नहीं कहाँ का झगड़ा आपके ऊपर उलट दें. तो बच के चलिएगा, क्योंकि इतनी परेशानियां हैं दुनिया में। कोई घर की बात को लेकर के गुस्से में भरा रहता है, कोई दफ्तर की बात लेकर के, कोई सफर की बात लेकर के। अरे साहब, अगर कोई बिना किसी खास कारण के उबलने लगे, उछलने लगे और आपको कुछ कहने लगे, तो टल लेना, बच लेना, क्योंकि ये जिंदगी हंसने मुस्कुराने ठाके लगाने के लिए भी बहुत छोटी है। झगड़ा करने के लिए लोग कैसे टाइम निकाल लेते हैं।
14: आज गालो मुस्कुरा लो,
16: यही करना है, यही करवाना है, लेकिन अब जाना है। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा नाउ।

टी से दो गाने चुने हैं मैंने, दो गाने चुने हैं मैंने टी से, क्योंकि दोनों इतने खूबसूरत है. सो आई थॉट आई विल गेट यू टू लिसन टू टू सॉन्ग्स बिगिनिंग विद टी.

0: across London. This is Ballybrambat on Like a Gold.
1: तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: वाह व्हाट अ ट्रीट, मजा आ गया दो गाने सुनकर, बिकॉज आई कुडंट चूज कि मैंने टी से कौन सा गाना लेना चाहिए. सो आई होप यू एग्री विद मी कि दोनों गाने तगड़े थे. एक था देश परदेश का और दूसरा दो और दो पांच. आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ किशोर कुमार यस्टरडे स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड. हम इंटरव्यू भी कर रहे थे हमारे सुरेश जी का, हु वाज डूइंग ऑफ कोर्स द वंडरफुल शो ऑन 6th of November, दैट्स क्रेजी फॉर किशोर. तो वो इंटरव्यूज के कारण ऑब्वियसली एक दो गाने पीछे हो जाते हैं. सो इसलिए हमने सोचा कि विल कंटिन्यू द जर्नी विद टी. सो टी यू और वी की बात आती है तो वी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि समटाइम्स हमारी इंडियन बोली जो होती है वहाँ पे व का व हो जाता है, व का व हो जाता है. सो वाह वाह बोलो. सो व्हेन वी राइट इट वी पुट इट एज अ डब्ल्यू, बट देन मैंने वाह वाह वी में डाला हुआ है. एंड देन दूसरा एक गाना है वादा है क्या, तो वादा वादा है क्या, तो मैंने वो डब्ल्यू में डाला है. सो वी डब्ल्यू थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. एंड देन वाई एंड जेड वी शैल एंड द आवर विद दैट. इन द सेकेंड आवर इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. इट्स द फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि, सो ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग जय माता दी. And available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com. The show is sponsored by Jaimin, Jaimin Foods. And जब भी गरबा और डांडिया में जाते हैं, सब लोग जैमिन के पैकेट्स लेकर जाते हैं क्योंकि फराड़ी है. That's right. इससे ज़्यादा मज़ा क्या आ सकता है? हर एक राउंड के बीच में थोड़ा सा फराड़ी खाओ और वापस गरबे में थोड़ा जोर लगाओ. So I am also going to announce that the show goes to Laika Radio Midlands, and it's 461st day of Laika Radio Midlands, which started on 1st of July 2025. So Midlands walon ko namaskar, mera adab, sat sri akal, and a big hello. And Sandy Shah will continue on drive time at 4 p.m. and on Laika Radio Midlands, it's going to be Raj Batan from 4 to 7. Aage badhte hain, hum jayenge U pe, the letter U of Kishore Kumar after the SBI rates.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the latest rates, for £1 in British sterling, you can get up to 125.7 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back. The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
7: When you lose someone dear, a little support can mean so much. Om Funeral Care provides compassionate guidance, respecting your family's customs and traditions. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our priests conduct funeral rites in Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, English, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
10: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
11: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
11: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 0192322747. बुक योर टेबल टुडे।
12: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA99PE. Come and share the joy of Navratri with us.
13: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
14: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler. Get ready for winter.
16: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India. Bringing India closer.
17: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods. Bringing sparkle to your Diwali.
18: दिल की बात हीरे के साथ। डायमंड रिंग सिर्फ £500 से शुरू। मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड। कॉल 0208767-7627। मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स।
19: Did you know Kavita Krishnamurthy, the iconic voice behind Hawa Hawaii, received the prestigious Padma Shri in 2005 for her contribution to music?
20: Kavita Krishnamurthy, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at box office. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
21: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
22: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका brought to you by Star Tours. Paris jana hai to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours, travel once and you'll travel again and again.
23: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
25: सुलगे है तन्हाई मेरी

करे पेट भरे न भरे प्यार करेंगे, आँखों के अंधे आँखें चार करेंगे। गली गली ये मजनू के चेले कहते फिरते हैं कोई दिल ले ले ले ले ले ले ले ले। दिल है या कोई तरकारी है, अजी साहब ये कैसी बीमारी है। काले कलोटे भौरे घूमे डाली डाली, वो छी छी डाली डाली।

0: बुल्लू बुल्लू पाली पाली बाते हजारों दिल खाली सोला
1: another Ashley Burman hit Rajinder Krishan and the letter is W or V I should say
2: the track of the hour sponsor by Coca noodles more flavors more convenience more yum grab your Coca bowl today
3: होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज
4: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
5: लाइका रेडियो Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds.

0: तेरे दिल लहरा के चल. That was Kalyan ji Anand ji with Majru Sultanpuri. उन्होंने वो गाना कंपोज किया था फिल्म इशारा में 1964 की. और फिर ये गाना टैक्सी चोर का बप्पी दा ने फिर गाना कंपोज किया अनजान की लिरिक्स के साथ विद किशोर कुमार's वॉइस. दैट इज W वादा है क्या. होप यू एंजॉयड दिस सॉन्ग. अच्छा है ना पकड़ा. चल मेरे दिल लहरा के चल. नहीं नहीं सुना रहा मैं.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3212, Indian rupees 125.8, Afghan Afghanis 85.78, Pakistani rupees 365.75, Kenyan shillings 171.42, and Mauritian rupees 62.90.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £99.53 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: नीसा नासिर लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.
4: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
6: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
7: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
6: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
7: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
6: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
7: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116.
6: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
8: Sunshine, skyscrapers and souks.
9: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
8: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
9: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
8: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
9: Southall Travel. At all protected.
10: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
11: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with SKLPC UK, Sri Kutch Leva Patel Community UK on Thursday 15th October at India Gardens West End Road, Northolt, UB56RE. Join us for a wonderful celebration of music, dance and community.
12: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970.
13: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
14: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
13: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
14: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
13: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
15: Plan your exotic dream holiday to Maldives, Mauritius, Bali, Zanzibar and many other destinations only on TravelHubWorld.com.
16: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
17: TravelHub, best service with unbeatable price.
16: At all protected.
17: Visit TravelHubWorld.com.
18: बात क्या है बंटू?
19: अरे बोलो काक भसुंडी।
20: मेरठ की कियोटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
21: अरे नहीं, क्या हुआ? कैसे बेहोश हो गई यार?
20: और लाइफ बन गई हेवन।
22: भाभी डायन है।
20: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिसगाइज?
23: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
24: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज October 16।
23: आप सिर्फ मजे लो।
25: Do you know you can open your NRE and NRO account from the comfort of your home by requesting us for a home visit? You can also visit any ICICI Bank UK branch or call us at 0344124444. You will be transaction ready with immediate access to a debit card and a checkbook. Just reach out to ICICI Bank UK and they have a solution for your banking in the UK or in India. ICICI Bank UK.
26: ICICI Bank UK is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
27: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India. TNCs apply.
28: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
29: See ya.
30: Big celebrations, sweet moments and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
31: Sira Cash & Carry.
32: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.
0: Gustakhi maaf, kehna zaruri hai. We have reached letter Y. Kishore Kumar, A2Z. में अब वाई पे आता है फिल्म महल का गाना। किशोर कुमार और आशा भोसले, ये दुनिया वाले पूछेंगे।
33: ये दुनिया वाले पूछेंगे।
0: कल्याण जी आनंद बख्शी की लिरिक्स।

0: राग हमीर।
1: Forgotten memories refreshed like a gold.
0: And we arrive at letter Z of Kishore Kumar, Mr. India का गाना जिंदगी की यही रीत है। और वो गाना जो आपने सुना वो था राग हमीर, जैसे कि दूसरा गाना है मधुबन में राधिका नाचेरे, वही राग। नेक्स्ट आवर किशोर कुमार सॉन्ग्स बेस्ड ऑन रागस।

दिस सॉन्ग sung by Kishore Da is Raag Shivranjani. The next song is Bhim Palasi. आप सुनिएगा, लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि ये राग धनी है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा क्यों धनी.

pitch perfect. That's what I call it. And that happens to be none other than Kishore Da. And can you believe that this song, Mere Naina Sawan Bhado, Rafi Saab, obviously, when someone राग आधारित गाना या तो हाई पिच गाना और एक डिफिकल्ट गाना जो होता है तो पहला नाम हमेशा रफ़ी साहब का ही आता है जहन में. लेकिन यहाँ पे राजेश खन्ना जी ने गुजारिश की, काका जी ने आर डी बर्मन को कहा, पंचमदा को कहा कि प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कीजिए किशोर दा को कि वो प्लीज़ गाएं ये मेरे लिए. तो फिर किशोर दा ने एक्सेप्ट कर लिया और बड़ी मेहनत करके इन्होंने ये गाना गाया फिल्म शिव रंजनी, महबूबा फिल्म का. दैट वाज आर डी बर्मन. एंड देन बाप ने कौन सा गाना 1971 में शर्मीली फिल्म का, ओ वाओ, खिलते हैं गुल यहाँ. आप सब बड़े प्रभावित हो गए ये गाना सुनकर. ये मैंने देखा आपके मैसेजेस से. अभी इसकी एक कहानी ऐसी है कि कुछ दोस्त बैठे थे पब में, सारे म्यूजिशियंस, एंड मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जो मुझे नॉलेज मिलता मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. सो वो दो आर्ग्यू करने लगे और कहने लगे कि ये गाना जो है खिलते हैं गुल यहाँ, हम लोग म्यूज़िक प्रैक्टिस से आ रहे थे तो उन्होंने पब में बैठ के आर्ग्यूमेंट शुरू कर दी. खिलते हैं गुल यहाँ बोलते कि ये राग भीमपलासी नहीं है, ये राग धानी है. सो दोनों ने फिर बैठ के आर्ग्यूमेंट की एंड देन जिसने कहा था कि ये भीमपलासी है उसने प्रूव करके दिखाया. क्योंकि दोनों राग में कैसे बोलते हैं पेंटेटोनिक राग, मतलब पांच सुर जो होते हैं. तो धानी के राग है सा, फिर कोमल गा, फिर मा, और फिर आई थिंक इट इज पा कोमल मस्ट बी एंड नी कोमल नी. ओके, तो पा कोमल है और नी. सो अभी पांच सुर हुए ना, सो सा कोमल गा एंड देन मा देन कोमल पा एंड नी. सॉरी मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं पर समझ पड़ेगी आपको. और भीमपलासी इज ऑल्सो यूजिंग द सेम फाइव नोट्स बट इसमें आरोह और अवरोह होता है, दैट मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग. अब डिसेंडिंग में भीमपलासी यूजेज सेवन नोट्स नॉट फाइव, क्योंकि वापसी में इट यूजेज

0: डिसेंट में दी शुद्ध धा और शुद्ध रे जो सुर मिस हो रहे थे ऑन गोइंग असेंडिंग, वो ही सुर वो वापसी में इंक्लूड करते हैं. एंड दैट इज वाई ये गाने के अंदर दीज नोट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड एंड दैट्स वाई इट प्रूव्ड दैट इट इज भीम पलासी. सो आई थॉट जिनको समझ पड़ती हैं हमारे अनिल भट्ट जैसे लोग वो समझते हैं राग को, तो ही विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. बट आप इतना ही जानिएगा कि जो आर्ग्यूमेंट हुई थी धानी और बिमपलासी दोनों पेंटेटोनिक राग्स हैं, लेकिन वापसी में वो डिसेंडिंग में वो बिमपलासी सात सुर यूज़ करते हैं. बस इतना ही. अब किशोरदा के बारे में ही वॉज वेरी अंडर एस्टिमेटेड एंड कहते थे लोग के ही इज़ नॉट ट्रेन्ड सो कैसे वो गाएंगे, लेकिन लुक एट हिम, इट्स ही वॉज गॉड सेंट. इनमें एक कला थी, ही यूज टू एब्जॉर्ब द नोट्स एंड यूज टू सिंग. उनको पूछो तो ही डिड नो कौन सा राग है, लेकिन वो नोट्स छोड़ते नहीं थे. उनको जैसे गाना बताया जाता था उसमें वेरिएशंस भी करते थे, लेकिन ही वुड सिंग इट एग्जैक्टली राग आधारित. नेक्स्ट गाना जो होगा इट्स फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड उलझन, और उलझन फिल्म में एक इतना प्यारा गाना अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, दैट इज आहिर भैरव, उसमें ये गीत होगा. उसके बाद होगा जिंदगी के सफर में, वाह वाह वाह वाह जिंदगी के सफर में आपकी कसम का गाना जो है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो तो दैट इज इन राग बिहाग. एंड देन हम जाएंगे ऑन राग पहाड़ी, कांची रे कांची. एंड देन उसके बाद परिचय फिल्म का एक गाना है सारे के सारे गामा को लेकर, दैट इज़ अलैया बिलावल. उसके बाद देखेंगे जैसे वक्त रहा तो मैं और सुनाऊंगा आपको. आई होप यू आर एंजॉइंग राग आधारित सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा. वैसे मेरे पास लिस्ट है ऑफ अबाउट 30 सॉन्ग्स, सो कभी ना कभी हम सुना देंगे आपको. मैं हूं पाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com एंड ऑल्सो ऑन लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 125.2. It has just changed to 125.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: London, are you ready? Raga Event presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone. 11, 11.
7: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11.
7: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danube 11. Danube Properties. Danube 11.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet, or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange, or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.

0: भानु गुप्ता, रिहर्सल चल रहा था, द गिटारिस्ट भानु गुप्ता, उन्होंने गलती से एक कॉर्ड बजाया विच वॉज नॉट सपोज टू हैव बीन प्लेड। वो गलत कॉर्ड बजा और सब लोग स्टूडियो में हंसने लगे और पंचमदा ने कहा नहीं यही सही रहेगा और ये पीस है टन टिंग टंग, वो गलती थी लेकिन आज हिट हो गई।
1: Feel good classics all day, like a gold.
2: मुसाफिर हूँ यारो,
0: राग झिंझोटी,
2: ना घर है ना ठिकाना,
0: फिल्म परिचय। आर डी बर्मन एंड लिरिक्स बाय गुलजार।

0: And what a beautiful song from that beautiful film, जिसमें सब गाने हिट थे, दिल का क्या कसूर। और रवि शर्मा जी यहाँ स्टूडियो में पधारे तो मुझे लगा कि मैं अभी मेरा शो शुरू होने वाला है।
1: नहीं, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं बाली भाई, आपको पता है कितने बार दे चुका हूँ जान आपके लिए।
0: वो तो मुझे मालूम है, मैं भी तो जान देता हूँ आपको हर
1: रोज। आप भी रोज जान देते
0: हैं। हमारे इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आप लेकर आए हैं, प्लीज आप।
1: पंजाब लुधियाना से, इंडिया से बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर भी हैं।
0: हाँ जी।
1: और म्यूजिक प्लेयर भी हैं।
0: आपका नाम सर?
2: जंगा कैंट।
1: जंगा कैंट,
0: वाह वाह। एंड आपकी स्टूडियो है ना चंडीगढ़ में?
1: लुधियाना में। लुधियाना में,
0: लुधियाना में, लुधियाना में।
1: हंसराज हंस के साथ,
0: हंसराज हंस
1: और अपने गुरदास मान के साथ और पंजाबी कलाकारों में सबके साथ इन्होंने बजाया हुआ है।
0: और दूसरे भी गेस्ट आए हैं। आपका नाम?
3: मंदाकिनी।
0: मंदाकिनी। और आपका?
1: गीता।
0: गीता जी, वेलकम, वेलकम टू लाइक अ गोल।
1: अच्छा गाते हैं,
0: बहुत अच्छा।
4: सर आपसे मिलकर बहुत खुशी।
0: मुझे भी बड़ी
4: खुशी। आपका बहुत नाम सुना है। बहुत बड़ी हस्ती है हिंदुस्तान की।
0: शुक्रिया।
4: हमेशा ही हमारी शो
1: कह रहे थे मुझे, हमें मुंडे से मिलवाओ जेड़ा बिगड़ता है मुंडा।
0: अब तो मुंडा सुधर गया।
4: ओके
0: चंगा जी, थैंक यू
1: भाई,
0: नमस्कार, थैंक यू। And this is Bali Brahmbhatt on Like a Gold with Gold Afternoons, available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and likeagold.com. And also in Leica Radio Midlands, and it is the 463rd day of Leica Radio Midlands, 4 p.m. We're going to have Sandy Shah coming in my hot seat here to make it hotter, and it's going to be Raj Patan on Leica Radio Midlands 427.
5: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the rates, we have £1 in British sterling can get you up to 125.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
5: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: And it's competition time. Are you ready? Yes, Crazy for Kishore. मैंने आपको बताया था वो शो कल सुरेश जी ने आके बड़ी बेहतरीन अदा से हमें समझाया था कि कैसा शो है, और उसकी ऑडिशन भी जो 1 नवंबर को होने वाली है, और यहाँ पे Crazy for Kishore दिवाली स्पेशल फीचरिंग द मोस्ट मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ किशोर कुमार, अ ट्रिब्यूट नाइट विद द 515 लाइव बैंड। एंड आई गॉट, वी गॉट आवर फ्रेंड इंद्राणी दत्ता आल्सो सिंगिंग इन देयर। एंड ऑन फ्राइडे 6th of November एट द प्रिंस रीजेंट होटल। Tickets at eventbrite.co.uk, exclusive radio partner, Leica Gold Radio. लेकिन आपको अगर दो टिकटें जीतनी है तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक वर्ड लिखना है, क्रेजी, CRAZY, बिकॉज शो का नाम है Crazy for Kishore Kumar. एंड आपका नाम, पूरा नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी With the word crazy, ये चार चीजें आप कर

0: Book Japan Tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
4: Okay. Yeah, love you too.
5: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: Big celebrations, sweet moments and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
11: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
11: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु,
13: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रीजेंट होटल में
12: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
13: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
11: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
14: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11, 11.
0: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
4: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer. इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
5: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
4: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
5: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
4: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
5: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116.
4: दिवाली का जश्न के संग.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
7: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW13 7NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
8: Sponsored by Star Tours. Europe jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
9: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
8: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL.
9: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
8: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा.
9: कॉल प्रथम पटेल 07838302450.
10: Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with TravelHubWorld.com.
11: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
11: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
7: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
12: A little sparkle, a lasting impression. Diamond tennis bracelets from £2,500. Meena Jewellers, 181 Upper Tooting Road. Call 020-8767-7627. Meena Jewellers.
7: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बस प्यार ही प्यार।
1: किशोर कुमार ने कंपोज भी किया, किशोर कुमार ने गाया भी, शैलेंद्र जी ने लिखा। दूर गगन की छाओं में, व्हाट अ फिल्म किशोर दा।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
1: थोड़ा यशुदास और हेमलता हो जाए नी। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, वाह क्या गाना है। खुशियां ही खुशियां हो, रविंद्र जैन ने लिखा, रविंद्र जैन ने कंपोज किया, जैसे कि द प्रीवियस सॉन्ग में किशोरदा ने किया था।

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
0: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 AM and Leica Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970. The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday, 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW13 7NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
3: Sponsored by Star Tours. Europe jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
6: Find the best deal for flights on Air India, Emirates, British Airways, Virgin, BIA and Sri Lankan Airline only with travelhubworld.com.
7: Humse sasta कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
8: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
9: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
12: आज तो हम जाएंगे 27 गांव एंड मुकी, हमारा दोस्त मुकेश हैज स्पेशली इनवाइटेड अस एंड खुश इज गोना बी देयर एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना बी देयर विद शीला एंड वी गोना have fun with Alka Shah there too. Jai Mata Di.

0: Mamster Golgappe at the Golgappe and the Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover Rio de Janeiro, Sao Paulo in Brazil, Machu Picchu and Cusco in Peru with TravelHubWorld.com.
3: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
4: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
5: Okay, yeah, love you too.
6: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
7: कलाई पर हीरे, चेहरे पर मुस्कान. डायमंड टेनिस ब्रेसलेट £2,500 से शुरू. मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड. कॉल 0208767-7627. मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स.
8: Light up your Diwali. Buy one, get one free on all fireworks with a huge selection to choose from. Shop diyas, candles, mustard oil and all your Diwali decorations. So many offers, you'll have to come and see for yourself. Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
9: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanatanevents.org. Brought to you by Sanatan Events.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: आज नवरात्रि का चौथा दिन है. इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की. प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए. माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
12: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका brought to you by Star Tours. Paris jana hai to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours, travel once and you'll travel again and again.
13: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: बात क्या है बंटू?
4: अरे बोलो काक भसुंडी।
5: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
6: अरे क्या हुआ?
7: कैसे बेहोश हो गई?
5: और लाइफ बन गई हेवन।
7: भाभी डायन है।
5: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
8: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
9: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
8: आप सिर्फ मजे लो।
9: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 AM and Laika Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970. Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
10: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203-048-4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
9: Craving the taste of home this festive season?
11: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
9: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today.
12: Haldiram's.
13: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
14: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
15: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL।
14: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
15: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फात्सुमा।
14: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450।
16: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
17: Wow! So, sending money to India is instant?
16: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
18: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फात्सुमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
3: This Diwali, celebrate with Shayona.
2: Enjoy Mathia and Chorafali. Mix and match any three for just £4.50.
3: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
2: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
3: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khaas. We'll be right back.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
2: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
3: बीकानेर वाला परंपरा भी।
2: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
3: बीकानेर वाला।
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक online at Eventbrite.
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
13: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
16: Escape to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Japan, Korea and Philippines with TravelHubWorld.com.
17: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ही प्यारे वाले गाने हैं टू स्टार्ट दिस शो। वेल, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी सौतन इन द वोकल्स ऑफ द इंडियाज नाइटिंगेल, लता मंगेशकर। इतना प्यारा वाला गाना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है अबाउट दिस मूवी। सो सौतन वॉज द फर्स्ट हिंदी मूवी to be ever shot in Mauritius. And क्या आपको पता है कि टीना मुनीम का जो रोल था was first offered to Zeenat Aman and then Parveen Babi, but both of them actually refused the role, and then of course Sawan Kumar Tak, who was the director of this movie, offered this role to Teena Muneem, and I think she did a beautiful role. उनका काम बहुत ही अच्छा था as Rukmini. अच्छा, इस movie में और एक actress थी, आप मुझे मैसेज कीजिए कि वो एक्ट्रेस कौन है। इनफैक्ट जिंदगी प्यार का गीत है वॉज एक्चुअली फिल्म्ड ऑन दिस एक्ट्रेस। सो मैसेज मी एंड टेल मी कि वो एक्ट्रेस कौन है। मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। आई एम वीर इन फॉर द लवली अनीसा जी, गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 10 PM ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
3: Big celebrations, sweet moments, and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash and Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes.
4: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
5: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
6: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
7: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: पड़े।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold.
4: Well, जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्यारे वाले गाने कंटिन्यू ही होंगे, अ ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड रफी साहब फ्रॉम द सुपरहिट मूवी यादों की बारात। एंजॉय दिस ट्रैक।

फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
2: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
1: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
5: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
6: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
8: टू बुक कॉल 0208 514 5400। Online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
10: बात क्या है बंटू?
11: अरे बोलो काक भसुंडी।
12: मेरठ की chaotic family में आई picture perfect दुल्हन।
13: अरे मुनी, क्या हुआ? कैसे बेहोश हो गई
12: यार? और life बन गई heaven।
14: भाभी, Diane है।
12: But wait, ये भाभी है या Diane in disguise?
15: तुम्हें Diane ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
0: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमास अक्टूबर 16।
15: आप सिर्फ मजे लो।
16: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
17: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
18: Experience the magic of Mexico City, Cancun, Mayakoba, Tulum and Caribbean Islands with travelhubworld.com.
19: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
18: Travel Hub, best service with unbeatable price.
19: At all protected.
18: Visit travelhubworld.com.
0: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
20: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
21: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: यू नो कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो बस चलते ही जाएं खत्म ना हो. दिस इज वन सच सॉन्ग, तेरा मेरा प्यार अमर, इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले फ्रॉम द मूवी असली नकली. क्या केमिस्ट्री थी देव साहब एंड साधना जी के बीच में. यू नो ये गाना जो पिक्चराइज किया हुआ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग्स. जैसे साधना जी नो चांद को देख के ये गाना गा रही है एंड देव साहब अपने ही अंदाज में चलते जा रहे हैं. वेल ऐसे और गाने भी हैं मेरे गानों के पिटारे में, ये तो बस शुरुआत है. आगे आगे देखिए होता है क्या.
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो. नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी.
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी.
2: बीकानेर वाला.
3: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो.
4: Catch Dil Chata Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
5: Shaadi karne ke liye kisi se pyar karna bahut zaruri hai. Tumhe kya lagta hai?
4: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFF UK.

0: प्यार का नगमा है दिस प्यारा वाला गाना. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी प्यासा सावन. आई थिंक दिस वाज अ ब्यूटिफुल मूवी. जितेंद्र एंड मौसमी चटर्जी, उन दोनों की केमिस्ट्री इन दिस सॉन्ग वाज सो स्वीट. यू नो, स्पेशली मुझे वो

0: किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है. दिस सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड शैलेंद्र सिंह फ्रॉम द You know, it's a very funny movie, Raffu Chakkar. If you've not watched this movie, तो मैं recommend करूँगा ये movie देखो. Rishi Kapoor and Goofy Pintel have done a fantastic job. You know, I actually, अगर आपने नहीं देखी तो मैं story reveal नहीं करूँगा, but बहुत ही प्यारी वाली movie है. You know, जब कुछ feel good movie देखनी हो, थोड़े बहुत popcorn साथ में हो, एक diet coke साथ में हो, तो क्या बात है. You know, this is like a perfect movie to watch. And of course, the chemistry between Neetu Singh and Rishi Kapoor is so good. They are actually one of my favorite on-screen and off-screen couples. बहुत ही प्यारी जोड़ी थी इनकी.
1: लाइका गोल्ड अब होगा वीकेंड और भी सुहाना. द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: Another superhit song from the superhit movie Sagar in the vocals of Kishore Da and Lata Mangeshkar. Well, मैं गाने का नाम नहीं बताऊंगा, आप तो सुनी लोगे.

0: फजा भी है जवां जवां. दिस सॉन्ग फ्रॉम द सुपरहिट मूवी निकाह, एंड ऑफ कोर्स इसमें थे राज बब्बर, दीपक पराशर एंड द ब्यूटीफुल सलमा आगा. वेल, ये सलमा आगा की डेब्यू मूवी थी एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली संग बाय हर. सुपर टैलेंटेड आई मस्ट से. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, सो आई एम फ्रॉम मुंबई, बेसिकली आई वॉज रेज्ड इन मुंबई, एंड ये सॉन्ग शूट किया गया था बैंडस्टैंड में. यस, जहां शाहरुख खान का बंगला है, सलमान खान भी वहीं रहते हैं. सो दिस सॉन्ग वॉज एक्चुअली शॉट इन बैंडस्टैंड, एंड तभी एक होटल हुआ करता था सी रॉक, विच वॉज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर होटल्स इन मुंबई. एंड यू नो दिस गाना पूरा ही वहीं पे शूट किया गया है. एंड इफ यू एवर गो टू मुंबई, यू मस्ट विजिट बैंडस्टैंड. इट इज ब्यूटिफुल, यू नो, वो जो सी का व्यू है. हाय, मुझे तो मुंबई की याद आ गई. आई एम वीर इन फॉर द लवली अनीसा जी, प्लेइंग सम प्यारे प्यारे गाने ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. This is Anisa Nasir on Like a Gold Greater London.
0: After that romantic number, थोड़ी सी मस्ती हो जाए with this lovely track from the movie Train in the vocals of Rafi साहब. Enjoy.

0: This is Anis and Nessie with The Big Show.
1: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो.
2: दिल चाहता है on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase cinema.
3: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी. तुम्हें क्या लगता है?
2: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
4: Sunshine, skyscrapers and souks
5: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
9: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 AM and Leica Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
10: दिल की बात हीरे के साथ. डायमंड रिंग सिर्फ £500 से शुरू. मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड. कॉल 0208767 7627. मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स.
0: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
11: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 PM with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo only on Leica Gold.

0: ये लड़की है या शोला, इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी सिलसिला. वेल, इस गाने के बाद वन मोर सॉन्ग एंड वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. दिल तो नहीं कर रहा बट बाय तो बोलना ही पड़ेगा. बट रिमेम्बर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर. यू कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल. एंड आई प्रॉमिस कि मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपसे जरूर मिलूंगा. टिल देन स्टे सेफ एंड एंजॉय द लवली सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट.
1: Like a Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.